ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं और अब कुछ मजीद खबरें। अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुहिदे पर मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत के मकसद से बज़ाहिर आखिरी लम्हात की मुशावरत जारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हफ्ते के रोज सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने मुज़ाकरात में शामिल ममालिक के रहनुमाओं से फोन पर बात की है। इनमें सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, तुर्की और सालिस पाकिस्तान शामिल थे। दोनों अतराफ के ज़राए इब्लाग के इदारे मुफाहमत की याददाश्त के मुंदरजात की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी का कहना है कि इस दस्तावेज पर लिबनान समेत तमाम महाजों पर लड़ाई खत्म करने और ईरानी खाम तेल और दीगर बरामदात पर से पाबंदियां आर्जी तौर पर हटाने की शिकें शामिल हैं, जबकि बातचीत जारी है। इसमें यह भी कहा गया है कि अमरीकी बहरी नाकाबंदी और आबनाए हुरमत से मुतालिक मसाइल के लिए 30 दिन मखसूस किए जाएंगे। जोहरी मामले पर मुज़ाकरात के लिए इसके मुतवाजी 60 दिन मुख्तस किए जाएंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमरीका और सालसी करने वाले ममालिक के हुक्काम के हवाले से कहा है कि ट्रंप एक ऐसे मुहाइदे को कबूल करने के करीब हैं जिससे वॉशिंगटन और तेहरान को हतमी मुहाइदे तक पहुंचने के लिए 30 दिन का वक्त मिलेगा। अहदेदारों ने यह भी कहा कि अगर जरूरी हुआ तो इस मुद्दत में 1 माह की तौसी की जा सकती है। न्यूज वेबसाइट ऑक्सियस ने अमरीकी अहदेदार का हवाला देते हुए कहा कि वॉशिंगटन और तेहरान मुफाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत करेंगे जो 60 दिन तक के लिए होगी। इत्तलात के मुताबिक अहदेदार ने कहा कि आबनाए हुरमस इस मुद्दत के दौरान बगैर किसी महसूल के खुली रहेगी। इसके इवज अमरीका ईरानी बंदरगाहों पर से अपनी नाकाबंदी खत्म करेगा और तेहरान को आजादाना तौर पर तेल फरोख्त करने की इजाजत देने के लिए पाबंदियों में कुछ छूट देगा। लेकिन तस्नीम न्यूज एजेंसी का कहना है कि अगर याददाश्त पर दस्तखत हो जाएं तब भी ईरान आबनाए हुरमत

0: किसी किस्म के इकदामात को कबूल नहीं किया। न्यूज एजेंसी का यह भी कहना है कि ईरान मुंजमिद असासों को जारी करने का मुतालबा कर रहा है। रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ बड़े पैमाने पर किए जाने वाले हमले में कीव और दीगर मकामात पर 4 अफराद हलाक हो गए हैं। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने हमले की मजम्मत की है। उनका कहना है कि रूसी अफवाज ने ओरेशिंग का इस्तेमाल किया, जो उनका जदीद तरीन दरमियानी फासले तक मार करने वाला बिलिस्टिक मिजाइल है। यूक्रेन की फजाइया ने ऐलान किया कि यह हमला इतवार की सुबह तक किया गया। हुकाम ने इत्तला दी है कि दारुल हुकूमत कीव में 2 अफराद हलाक और 78 जख्मी हुए। उन्होंने ये भी कहा कि 2 अफराद दारुल हुकूमत के गिर्द वाके कीव खित्ते में मारे गए। एक रिहायशी ने एनएचके को बताया कि उन्हें जो कुछ भी मिला वो उसे लेकर पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल होने वाले एक सबवे स्टेशन पर चली गईं। उन्होंने मजीद कहा कि ये पहला मौका था जब उन्हें इतने तवील और खौफनाक हमले का तजर्बा हुआ। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर एक पैगाम पोस्ट किया। उनका कहना था कि रूस ने दारुल हुकूमत से 80 किलोमीटर जनूब में कीव खित्ते के कस्बे की जानिब ओरेशिंग दागा था। कहा जाता है कि रूस के इस जदीद तरीन मिजाइल को रोकना मुश्किल है।
1: और अब आज की अहम खबरों की 6 सुर्खियां। अमरीका और ईरान के दरमियान मुजाकरात में पेशरफ्त की तवक्को पर टोक्यो का कलीदी मियारी इशारिया पीर को पहली बार 65,000 की बुलंदी तक जा पहुंचा। अगले माह जापान से लॉन्च किए जाने वाले H3 रॉकेट का मरकजी हिस्सा इतवार के रोज मीडिया को दिखाया गया। और आबनाए हुर्मुज से गुजरने वाला खाम तेल का टैंकर जापान पहुंच गया है। NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुईं।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 26 मई मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानो से सुने समाचार। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सानाए का कहना है कि ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए सरकार वित्त वर्ष 2026 का पूरक बजट पेश करने की योजना बना रही है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वे अगले सप्ताह तक संसद में 3 खरब येन यानी 18.8 अरब डॉलर से अधिक का बजट मसौदा प्रस्तुत करेंगी। सोमवार को ताकाइची ने पत्रकारों को बताया कि पश्चिम एशियाई हालातों के प्रभावों से सरकार कैसे निपटेगी। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया की स्थिति से निपटने के लिए सरकार एक आरक्षित निधि बनाएगी ताकि पेट्रोल की खुदरा कीमतों पर लगाम लगाने जैसे उपाय जारी रखे जा सकें। ताकाइची ने कहा कि सरकार अगले वसंत तक के लिए पर्याप्त तेल सुनिश्चित करने में सक्षम होनी चाहिए, क्योंकि होर्मूज जलडमरू मध्य के अलावा अन्य मार्गों से बड़ी मात्रा में तेल आयात किया जाएगा। इससे पहले सरकार ने तेल की इतनी मात्रा का अनुमान लगाया था जो इस वर्षांत के बाद तक भी पर्याप्त होगी। ताकाइची ने यह भी कहा कि सरकार इस साल गर्मियों में ऊर्जा बचत के लिए सामान्य से सख्त अपील नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अभी समय नहीं आया है कि सरकार लोगों से ऊर्जा बचाने का इतना आग्रह करे कि आर्थिक गतिविधियाँ ही ठप पड़ जाएं। जापान इस वर्ष गर्मियों में लोगों का ऊर्जा खर्च कम करने के लिए अरबों डॉलर आवंटित करने जा रहा है। ईरान संघर्ष के चलते ईंधन महंगा होने के कारण ये उपाय अपनाया जा रहा है। सरकार ने मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इस कदम को मंजूरी दी। इसके तहत जुलाई से सितंबर तक बिजली व गैस के बिल कम करने के लिए सरकार लगभग 510 अरब येन यानी 3.2 अरब डॉलर खर्च करेगी। ये धनराशि मौजूदा वित्त वर्ष के बजट में से अलग रखे गए 10 खरब येन के आपात कोष से आएगी। अधिकारियों का कहना है कि इस वित्तीय सहायता से 3 महीनों में एक औसत परिवार के गैस व बिजली के बिलों में लगभग 5,000 येन यानी करीब $31 की कमी आएगी। वित्त मंत्री खातायामा सात्सुकी का कहना है कि सरकार पश्चिम एशिया से होने वाली ऊर्जा आपूर्ति पर नज़र रख रही है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। भारत और जापान के विदेश मंत्रियों ने होर्मूज जलडमरू मध्य में सुरक्षित नौवहन तथा स्थिर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आपसी सहयोग पर सहमति व्यक्त की है। जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु मंगलवार को भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की क्वाड व्यवस्था के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत यात्रा पर हैं। क्वाड बैठक से पहले सोमवार

को मोतेगी ने भारतीय विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर से मुलाकात की। जयशंकर ने भारत जापान संबंधों को और मजबूती देने की आशा व्यक्त की। मोतेगी ने घनिष्ठ द्विपक्षीय समन्वय की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि दोनों देशों को स्वतंत्र एवं मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र बनाने के प्रयासों में प्रेरक शक्ति के रूप में काम करना चाहिए। जयशंकर और मोतेगी अहम सामग्रियों की आपूर्ति श्रृंखला को और लचीला बनाने सहित आर्थिक सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग में तेजी लाने पर सहमत हुए। उन्होंने पुष्टि की कि भारत और जापान रक्षा, सुरक्षा और जन आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के ठोस कदम उठाएंगे। दोनों ने पश्चिम एशिया के हालातों पर भी विचार विमर्श किया और होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित नौवहन तथा ऊर्जा व अहम सामग्रियों की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने सहित विभिन्न मुद्दों पर सहयोग की पुष्टि की।

0: ये समाचार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: जापान के शिक्षा मंत्रालय की एक विशेषज्ञ समिति ने सरकारी स्कूलों से आग्रह किया है कि वे विदेशी छात्रों की तेजी से बढ़ती संख्या से निपटने के लिए बाहर से जापानी भाषा के प्रशिक्षकों को नियुक्त करें। इस समिति ने विदेशी छात्रों के लिए शैक्षिक वातावरण में सुधार के उद्देश्य से एक रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया है। मंत्रालय का कहना है कि पिछले शैक्षणिक वर्ष में मार्च तक सरकारी स्कूलों में रिकॉर्ड 84,759 छात्रों को जापानी भाषा की कक्षाओं की आवश्यकता पड़ी। 2016 के शैक्षणिक वर्ष के बाद 9 साल में ये संख्या दुगनी हो गई है। आमतौर पर लाइसेंस प्राप्त शिक्षक ही जापानी भाषा पढ़ाते हैं, लेकिन मसौदे में प्रस्ताव दिया गया है कि शिक्षा अधिकारी एक ऐसी व्यवस्था अपनाए जिसके तहत कुछ शर्तें पूरी करने पर लाइसेंस के बिना भी बाहरी अध्यापक अंशकालिक प्रशिक्षक के रूप में कक्षाओं में पढ़ा सकें। मसौदे में सरकार से ये भी आग्रह किया गया है कि वो वित्तीय सहायता प्रदान करे ताकि जापान भर की स्थानीय नगरपालिकाएं देश में नए आए बच्चों के लिए पूर्व कक्षाएं आयोजित कर सकें। इन कक्षाओं में बच्चे स्कूली तौर तरीके और जापानी भाषा के बुनियादी वाक्य सीख सकते हैं, लेकिन ऐसे कार्यक्रम चलाने वाली नगरपालिकाओं की संख्या अब भी सीमित है। समिति के सदस्यों ने विश्वविद्यालयों में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विदेशी बच्चों को पढ़ाने से संबंधित कक्षाएं शामिल करने और जापानी भाषा शिक्षण के लिए दिशा निर्देश बनाने की भी मांग की। जापान में डिपार्टमेंट स्टोर की बिक्री अप्रैल में लगातार चौथे महीने बढ़ी। वसंत के कपड़ों तथा आभूषण व घड़ियों जैसी महंगी वस्तुओं की मांग में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई। जापान डिपार्टमेंट स्टोर्स एसोसिएशन का कहना है कि मौजूदा स्टोरों में बिक्री 440 अरब येन से कुछ अधिक यानी 2.8 अरब डॉलर रही। पिछले साल इसी महीने की तुलना में ये 5% से अधिक की वृद्धि है। विदेशी पर्यटकों को टैक्स फ्री वस्तुओं की बिक्री में लगातार दूसरे महीने वृद्धि दर्ज की गई। इस श्रेणी में आमदनी 18% बढ़कर 52 अरब येन यानी 33 करोड़ डॉलर हो गई। एक तरफ चीन से आने वाले पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई, लेकिन वहीं ताइवान, दक्षिण कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया के यात्रियों द्वारा अधिक खर्च से इसकी भरपाई हो गई।
0: इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: NHK World Japan की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 13वें पाठ में सीखेंगे ये बताना कि आप क्या करना चाहते हैं।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम, रोबोट मकान मालकिन हारूजी और चीन से आई फोटोग्राफर मिया से बात कर रही है। सब साझा आवास हारूसान हाउस की बैठक में हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 13वें पाठ की बातचीत।
2: निहोन नी वा नारे माश्ता का?
3: हाय।
2: निहोन दे दोन्ना कोटो गा शिताई देस का?
3: युकी गा मितताई देस। 北海道に行きたいです。
2: 北海道、いいね。
3: あと、友達に会いたいです。
2: おや？大丈夫？顔が赤いよ。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले हारूजी ने ताम से पूछा,
2: 日本に慣れましたか？
1: जापान की आदत हो गई।
0: ताम ने जवाब दिया,
3: हाय
1: जी।
0: उसके बाद हारूजी ने कहा,
2: निहोन दे दोन्ना कोटो गा शिताई देस का?
1: जापान में क्या करना चाहती हैं?
0: ताम ने कहा,
3: युकी गा मितताई देस।
1: बर्फबारी देखना चाहती हूँ।
3: होक्काइडो नी इकिताई देस।
1: होक्काइडो जाना चाहती हूँ।
0: तब मिया ने कहा,
2: होक्काइडो, ई ने।
1: होक्काइडो अच्छा है।
0: ताम ने आगे कहा,
3: अतो तोमोदाची नी आईताई देस।
1: और एक दोस्त से मिलना चाहती हूँ।
0: हारूजी के सेंसर ने कुछ भांप लिया और उनके गालों पर गुलाबी रोशनी जलने लगी। उन्होंने कहा,
2: ओया,
1: अरे।
0: मिया ने भी देखा कि ताम कुछ अलग लग रही हैं। उसने कहा,
2: डाइजोबु,
1: ठीक तो हो?
2: काओगा अकाइयो,
1: चेहरा लाल हो गया है।
0: लगता है ताम किसी खास दोस्त की बात कर रही हैं। खैर, कहानी में आगे पता चल ही जाएगा।
1: आज का मुख्य वाक्य है
3: युकी गा मितताई देस,
1: यानी बर्फबारी देखना चाहती हूँ। इसे याद करके आप ये बता सकेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं।
0: इसमें
4: युकी
0: का अर्थ है बर्फबारी और
4: मिताई देस
0: का मतलब है देखना चाहती हूँ।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि आप क्या करना चाहते हैं ये बताने के लिए क्रिया के मास रूप में से मास हटाकर ताई जोड़ते हैं। क्रिया मिरु यानी देखना का मास रूप है मिमास, तो उससे बन गया मिताई।
0: और अंत में जुड़ा है देस, जिससे वाक्य का विनम्र रूप बनता है। आज की बातचीत की दो अन्य पंक्तियों में भी वाक्य विनम्र रूप में है। एक है
4: होक्काइडो नी इकिताई देस,
0: जिसका अर्थ है होक्काइडो जाना चाहती हूँ। और दूसरा है
4: तोमोदाची नी आईताई देस,
0: यानी एक दोस्त से मिलना चाहती हूँ।
1: एक और जरूरी बात यह है कि वैसे तो जापानी भाषा में कर्म कारक है ओ, जो उस संज्ञा के बाद लगता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन कभी कभी ये गा में बदल सकता है, जैसे उन वाक्यों में जिनमें क्रिया के ताई रूप का इस्तेमाल हुआ है।
0: तो वाक्य बर्फबारी देखूंगा को जापानी भाषा में कहेंगे युकी ओ मिमास, और अगर क्रिया का ताई रूप लगाकर बोलना हो कि बर्फबारी देखना चाहता हूँ, तो वाक्य बनेगा युकी गा मिताई देस।
1: तो अब वाक्य सुनिए और साथ में बोलकर उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
4: मिताई देस, युकी गा मिताई देस।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक महिला

0: की जगह आप हारू जी की तरह
1: दोन्ना कोतो
0: का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है किस तरह का काम और भाव है क्या।
1: श्ताई
0: है क्रिया
1: शिमास
0: यानी करना का ताई रूप।
2: इसके बाद आदमी ने उत्तर दिया
3: रामेन गा थाबेताई देस
0: रामेन खाना चाहता हूँ।
2: इसमें
1: थाबेताई
2: है क्रिया
1: थाबेमास
2: यानी खाना का ताई रूप। तो अब इस उत्तर को बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
1: निहोन दे नानी गा शिताई देस का रामेन गा थाबेताई देस।
0: अब ये बताने का अभ्यास करते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। मान लीजिए आप क्योटो के किंग काकुजी मंदिर जाना चाहते हैं, तो ये बात कैसे बताएंगे।
2: मंदिर के नाम का उच्चारण है
1: किंग काकुजी, किंग काकुजी।
2: और क्रिया जाना के लिए जापानी शब्द है
1: इकिमास, इकिमास।
2: तो किंग काकुजी जाऊंगा या जाऊंगी बोलने के लिए जापानी वाक्य होगा
1: किंकाकुजी नी इकिमास।
2: तो अब कोशिश कीजिए।
1: किंकाकुजी नी इकिताई देस, किंकाकुजी नी इकिताई देस।
0: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो मिया की पंक्ति है। ये उसने ताम को शर्माते हुए देखकर बोला था, आप भी याद कर लीजिए।
1: दाइजोब, दाइजोब
2: का अर्थ है ठीक हो। इसका इस्तेमाल किसी के बारे में फिक्र जताने के लिए करते हैं। इसका विनम्र रूप है
1: दाइजोब देसु का।
2: तो दोस्तों अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
4: निहोन नी वा नारेमाश्ता का?
5: हाई।
4: 日本でどんなことがしたいですか？
5: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
4: 北海道、いいね。
5: あと、友達に会いたいです。
4: おや？
1: 大丈夫？顔が赤いよ。
0: और अब बारी है अंश हारू जी की सलाह की। आज की बातचीत हारूसान हाउस की बैठक में हो रही थी, इसलिए आज आपको जापानी घरों के बारे में बताते हैं।
2: दोस्तों जापानी घरों की बनावट या कमरों की संख्या अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ दो तरह के कमरे होते हैं, जापानी शैली के कमरे और पश्चिमी शैली के कमरे।
0: पश्चिमी शैली के कमरों का फर्श या तो लकड़ी का होता है या उस पर कालीन बिछा रहता है। उस पर लोग अक्सर कुर्सी और मेज लगाते हैं।
2: दूसरी तरफ जापानी शैली के कमरों में फर्श पर तातामी यानी फूस से बनी गद्देदार चटाई लगी रहती है। लोग तातामी पर ही जाबुतोन गद्दियां लगाकर नीची मेजों के इर्द गिर्द बैठते हैं और फुतोन गद्दे बिछाकर सोते हैं।
0: लेकिन इन दिनों पश्चिमी शैली के कमरे आम होते जा रहे हैं। बहुत सारे घरों में दोनों ही शैलियों के कमरे भी होते हैं, जिनमें से कम एक कमरा जापानी शैली का होता है। तातामी पर बैठना, सोना बहुत अच्छा लगता है।
2: एक और जरूरी बात ये है कि घर चाहे जापानी शैली का हो या पश्चिमी शैली का, जूते मुख्य द्वार के पास उतारकर घर की चप्पल पहनना आम है।
0: और तातामी कमरों में जाते समय तो चप्पल भी उतार कर जाते हैं। इस तरह आप तातामी की खुशबू का आनंद लेते हुए कमरे में आराम कर सकते हैं।
2: दोस्तों आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम वियतनाम में बिताए कुछ पुराने दिन याद करेंगी। तब तक के लिए
2: सायोनारा।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 26 मई मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला कावानो से सुने समाचार। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सानाए का कहना है कि ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए सरकार वित्त वर्ष 2026 का पूरक बजट पेश करने की योजना बना रही है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वे अगले सप्ताह तक संसद में 3 खरब येन यानी 18.8 अरब डॉलर से अधिक का बजट मसौदा प्रस्तुत करेंगी। सोमवार को ताकाइची ने पत्रकारों को बताया कि पश्चिम एशियाई हालातों के प्रभावों से सरकार कैसे निपटेगी। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया की स्थिति से निपटने के लिए सरकार एक आरक्षित निधि बनाएगी ताकि पेट्रोल की खुदरा कीमतों पर लगाम लगाने जैसे उपाय जारी रखे जा सकें। ताकाइची ने कहा कि सरकार अगले वसंत तक के लिए पर्याप्त तेल सुनिश्चित करने में सक्षम होनी चाहिए, क्योंकि होर्मूज जलडमरू मध्य के अलावा अन्य मार्गों से बड़ी मात्रा में तेल आयात किया जाएगा। इससे पहले सरकार ने तेल की इतनी मात्रा का अनुमान लगाया था जो इस वर्षांत के बाद तक भी पर्याप्त होगी। ताकाइची ने यह भी कहा कि सरकार इस साल गर्मियों में ऊर्जा बचत के लिए सामान्य से सख्त अपील नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अभी समय नहीं आया है कि सरकार लोगों से ऊर्जा बचाने का इतना आग्रह करे कि आर्थिक गतिविधियां ही ठप पड़ जाएं। जापान इस वर्ष गर्मियों में लोगों का ऊर्जा खर्च कम करने के लिए अरबों डॉलर आवंटित करने जा रहा है। ईरान संघर्ष के चलते ईंधन महंगा होने के कारण ये उपाय अपनाया जा रहा है। सरकार ने मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इस कदम को मंजूरी दी। इसके तहत जुलाई से सितंबर तक बिजली व गैस के बिल कम करने के लिए सरकार लगभग 510 अरब येन यानी 3.2 अरब डॉलर खर्च करेगी। ये धनराशि मौजूदा वित्त वर्ष के बजट में से अलग रखे गए 10 खरब येन के आपात कोष से आएगी। अधिकारियों का कहना है कि इस वित्तीय सहायता से 3 महीनों में एक औसत परिवार के गैस व बिजली के बिलों में लगभग 5,000 येन यानी करीब 31 डॉलर की कमी आएगी। वित्त मंत्री खातायामा सात्सुकी का कहना है कि सरकार पश्चिम एशिया से होने वाली ऊर्जा आपूर्ति पर नजर रख रही है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। भारत और जापान के विदेश मंत्रियों ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित नौवहन तथा स्थिर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आपसी सहयोग पर सहमति व्यक्त की है। जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु मंगलवार को भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की क्वाड व्यवस्था के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत यात्रा पर हैं। क्वाड बैठक से पहले सोमवार को मोतेगी ने भारतीय विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर से मुलाकात की। जयशंकर ने भारत जापान संबंधों को और मजबूती देने की आशा व्यक्त की। मोतेगी ने घनिष्ठ द्विपक्षीय समन्वय की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि दोनों देशों को स्वतंत्र एवं मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र बनाने के प्रयासों में प्रेरक शक्ति के रूप में काम करना चाहिए। जयशंकर और मोतेगी अहम सामग्रियों की आपूर्ति श्रृंखला को और लचीला बनाने सहित आर्थिक सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग में तेजी लाने पर

सहमत हुए। उन्होंने पुष्टि की कि भारत और जापान रक्षा, सुरक्षा और जन आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के ठोस कदम उठाएंगे। दोनों ने पश्चिम एशिया के हालातों पर भी विचार विमर्श किया और होर्मुज जलडमरु मध्य में सुरक्षित नौवहन तथा ऊर्जा व अहम सामग्रियों की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने सहित विभिन्न मुद्दों पर सहयोग की पुष्टि की।

0: ये समाचार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: जापान के शिक्षा मंत्रालय की एक विशेषज्ञ समिति ने सरकारी स्कूलों से आग्रह किया है कि वे विदेशी छात्रों की तेजी से बढ़ती संख्या से निपटने के लिए बाहर से जापानी भाषा के प्रशिक्षकों को नियुक्त करें। इस समिति ने विदेशी छात्रों के लिए शैक्षिक वातावरण में सुधार के उद्देश्य से एक रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया है। मंत्रालय का कहना है कि पिछले शैक्षणिक वर्ष में मार्च तक सरकारी स्कूलों में रिकॉर्ड 84,759 छात्रों को जापानी भाषा की कक्षाओं की आवश्यकता पड़ी। 2016 के शैक्षणिक वर्ष के बाद 9 साल में ये संख्या दुगनी हो गई है। आमतौर पर लाइसेंस प्राप्त शिक्षक ही जापानी भाषा पढ़ाते हैं, लेकिन मसौदे में प्रस्ताव दिया गया है कि शिक्षा अधिकारी एक ऐसी व्यवस्था अपनाएं जिसके तहत कुछ शर्तें पूरी करने पर लाइसेंस के बिना भी बाहरी अध्यापक अंशकालिक प्रशिक्षक के रूप में कक्षाओं में पढ़ा सकें। मसौदे में सरकार से ये भी आग्रह किया गया है कि वो वित्तीय सहायता प्रदान करे ताकि जापान भर की स्थानीय नगरपालिकाएं देश में नए आए बच्चों के लिए पूर्व कक्षाएं आयोजित कर सकें। इन कक्षाओं में बच्चे स्कूली तौर तरीके और जापानी भाषा के बुनियादी वाक्य सीख सकते हैं, लेकिन ऐसे कार्यक्रम चलाने वाली नगरपालिकाओं की संख्या अब भी सीमित है। समिति के सदस्यों ने विश्वविद्यालयों में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विदेशी बच्चों को पढ़ाने से संबंधित कक्षाएं शामिल करने और जापानी भाषा शिक्षण के लिए दिशा निर्देश बनाने की भी मांग की। जापान में डिपार्टमेंट स्टोर की बिक्री अप्रैल में लगातार चौथे महीने बढ़ी। वसंत के कपड़ों तथा आभूषण व घड़ियों जैसी महंगी वस्तुओं की मांग में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई। जापान डिपार्टमेंट स्टोर्स एसोसिएशन का कहना है कि मौजूदा स्टोरों में बिक्री 440 अरब येन से कुछ अधिक यानी 2.8 अरब डॉलर रही। पिछले साल इसी महीने की तुलना में ये 5% से अधिक की वृद्धि है। विदेशी पर्यटकों को टैक्स फ्री वस्तुओं की बिक्री में लगातार दूसरे महीने वृद्धि दर्ज की गई। इस श्रेणी में आमदनी 18% बढ़कर 52 अरब येन यानी 33 करोड़ डॉलर हो गई। एक तरफ चीन से आने वाले पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई, लेकिन वहीं ताइवान, दक्षिण कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया के यात्रियों द्वारा अधिक खर्च से इसकी भरपाई हो गई।
0: इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/हिंदी पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: NHK World Japan की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 13वें पाठ में सीखेंगे ये

0: बताना कि आप क्या करना चाहते हैं।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम, रोबोट मकान मालकिन हारूजी और चीन से आई फोटोग्राफर मिया से बात कर रही है। सब साझा आवास हारूसान हाउस की बैठक में हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 13वें पाठ की बातचीत।
2: निहोन नी वा नारे माश्ता का?
3: हाय।
2: निहोन दे दोन्ना कोटो गा शिताई देस का?
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
2: 北海道いいね。
3: あと友達に会いたいです。
2: おや大丈夫？顔が赤いよ。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले हारूजी ने ताम से पूछा,
2: 日本に慣れましたか?
1: जापान की आदत हो गई।
0: ताम ने जवाब दिया,
3: हाय।
1: जी।
0: उसके बाद हारूजी ने कहा,
2: 日本でどんなことがしたいですか?
1: जापान में क्या करना चाहती हैं?
0: ताम ने कहा,
3: 雪が見たいです。
1: बर्फबारी देखना चाहती हूँ।
3: 北海道に行きたいです。
1: 北海道जाना चाहती हूँ।
0: तब मिया ने कहा,
2: होक्काइडो いいね。
1: होक्काइडो अच्छा है।
0: ताम ने आगे कहा,
3: あと友達に会いたいです。
1: और एक दोस्त से मिलना चाहती हूँ।
0: हारूजी के सेंसर ने कुछ भांप लिया और उनके गालों पर गुलाबी रोशनी जलने लगी। उन्होंने कहा,
2: ओया?
1: अरे?
0: मिया ने भी देखा कि ताम कुछ अलग लग रही हैं। उसने कहा,
2: डाइजोबु?
1: ठीक तो हो?
2: काओ गा काइयो?
1: चेहरा लाल हो गया है।
0: लगता है ताम किसी खास दोस्त की बात कर रही हैं। खैर, कहानी में आगे पता चल ही जाएगा।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
3: युकी गा मिताई देस,
1: यानी बर्फबारी देखना चाहती हूँ। इसे याद करके आप ये बता सकेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं।
0: इसमें
4: युकी
0: का अर्थ है बर्फबारी और
4: मिताई देस
0: का मतलब है देखना चाहती हूँ।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि आप क्या करना चाहते हैं ये बताने के लिए क्रिया के मास रूप में से मास हटाकर ताई जोड़ते हैं। क्रिया मिरु यानी देखना का मास रूप है मिमास, तो उससे बन गया मिताई।
0: और अंत में जुड़ा है देस, जिससे वाक्य का विनम्र रूप बनता है। आज की बातचीत की दो अन्य पंक्तियों में भी वाक्य विनम्र रूप में है। एक है
4: होक्काइडो नी इकिताई देस,
0: जिसका अर्थ है होक्काइडो जाना चाहती हूँ, और दूसरा है
4: तोमोदाचि नी आइताई देस,
0: यानी एक दोस्त से मिलना चाहती हूँ।
1: एक और जरूरी बात यह है कि वैसे तो जापानी भाषा में कर्म कारक है ओ, जो उस संज्ञा के बाद लगता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन कभी कभी ये गा में बदल सकता है, जैसे उन वाक्यों में जिनमें क्रिया के ताई रूप का इस्तेमाल हुआ है।
0: तो वाक्य बर्फबारी देखूंगा को जापानी भाषा में कहेंगे युकी ओ मिमास, और अगर क्रिया का ताई रूप लगाकर बोलना हो कि बर्फबारी देखना चाहता हूँ, तो वाक्य बनेगा युकी गा मिताई देस।
1: तो अब वाक्य सुनिए और साथ में बोलकर उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
4: मिताई देस, युकी गा मिताई देस।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक महिला एक आदमी से पूछ रही है कि वे जापान में क्या करना चाहते हैं।
3: निहोन दे नानी गा शिताई देस का?
5: रामेन गा तबेताई देस।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले महिला ने पूछा,
3: निहोन दे नानी गा शिताई देस का?
1: जापान में क्या करना चाहते हैं?
4: निहोन दे
0: का अर्थ है जापान में। ये प्रश्न है, इसलिए इसमें प्रश्नवाचक शब्द
4: नानी
0: यानी क्या का उपयोग हुआ है।

0: अब ये बताने का अभ्यास करते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। मान लीजिए आप क्योटो के किंग काकुजी मंदिर जाना चाहते हैं, तो ये बात कैसे बताएंगे?
1: मंदिर के नाम का उच्चारण है
2: किंग काकुजी, किंग काकुजी,
1: और क्रिया जाना के लिए जापानी शब्द है
2: इकिमास, इकिमास।
1: तो किंग काकुजी जाऊंगा या जाऊंगी बोलने के लिए जापानी वाक्य होगा
2: किंग काकुजी नी इकिमास।
1: तो अब कोशिश कीजिए।
3: किंग काकुजी नी इकिताई देसु, किंग काकुजी नी इकिताई देसु।
0: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो मिया की पंक्ति है। ये उसने ताम को शर्माते हुए देखकर बोला था। आप भी याद कर लीजिए।
2: दाइजोबु, दाइजोबु
1: का अर्थ है ठीक हो। इसका इस्तेमाल किसी के बारे में फिक्र जताने के लिए करते हैं। इसका विनम्र रूप है
2: दाइजोबु देसु का।
1: तो दोस्तों, अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
4: 日本には慣れましたか？
5: はい。
4: 日本でどんなことがしたいですか？
5: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
4: 北海道、いいね。
5: あと、友達に会いたいです。
4: おや？
2: 大丈夫？顔が赤いよ。
0: और अब बारी है अंश हारू जी की सलाह की। आज की बातचीत हारूसान हाउस की बैठक में हो रही थी, इसलिए आज आपको जापानी घरों के बारे में बताते हैं।
1: दोस्तों, जापानी घरों की बनावट या कमरों की संख्या अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ दो तरह के कमरे होते हैं, जापानी शैली के कमरे और पश्चिमी शैली के कमरे।
0: पश्चिमी शैली के कमरों का फर्श या तो लकड़ी का होता है या उस पर कालीन बिछा रहता है। उस पर लोग अक्सर कुर्सी और मेज लगाते हैं।
1: दूसरी तरफ जापानी शैली के कमरों में फर्श पर तातामी यानी फूस से बनी गद्देदार चटाई लगी रहती है। लोग तातामी पर ही जाबुतोन गद्दियां लगाकर नीची मेजों के इर्द गिर्द बैठते हैं और फुतोन गद्दे बिछाकर सोते हैं।
0: लेकिन इन दिनों पश्चिमी शैली के कमरे आम होते जा रहे हैं। बहुत सारे घरों में दोनों ही शैलियों के कमरे भी होते हैं, जिनमें से कम एक कमरा जापानी शैली का होता है। तातामी पर बैठना, सोना बहुत अच्छा लगता है।
1: एक और जरूरी बात यह है कि घर चाहे जापानी शैली का हो या पश्चिमी शैली का, जूते मुख्य द्वार के पास उतारकर घर की चप्पल पहनना आम है।
0: और तातामी कमरों में जाते समय तो चप्पल भी उतार कर जाते हैं। इस तरह आप तातामी की खुशबू का आनंद लेते हुए कमरे में आराम कर सकते हैं।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम वियतनाम में बिताए कुछ पुराने दिन याद करेंगी। तब तक के लिए
1: सायोनारा।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 26 मई मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला कावानो से सुने समाचार। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सानाए का कहना है कि ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए सरकार वित्त वर्ष 2026 का पूरक बजट पेश करने की योजना बना रही है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वे अगले सप्ताह तक संसद में 3 खरब येन यानी 18.8 अरब डॉलर से अधिक का बजट मसौदा प्रस्तुत करेंगी। सोमवार को ताकाइची ने पत्रकारों को बताया कि पश्चिम एशियाई हालातों के प्रभावों से सरकार कैसे निपटेगी। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया की स्थिति से निपटने के लिए सरकार एक आरक्षित निधि बनाएगी ताकि पेट्रोल की खुदरा कीमतों पर लगाम लगाने जैसे उपाय जारी रखे जा सकें। ताकाइची ने कहा कि सरकार अगले वसंत तक के लिए पर्याप्त तेल सुनिश्चित करने में सक्षम होनी चाहिए, क्योंकि होर्मूज जलडमरू मध्य के अलावा अन्य मार्गों से बड़ी मात्रा में तेल आयात किया जाएगा। इससे पहले सरकार ने तेल की इतनी मात्रा का अनुमान लगाया था जो इस वर्षांत के बाद तक भी पर्याप्त होगी। ताकाइची ने यह भी कहा कि सरकार इस साल गर्मियों में ऊर्जा बचत के लिए सामान्य से सख्त अपील नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अभी समय नहीं आया है कि सरकार लोगों से ऊर्जा बचाने का इतना आग्रह करे कि आर्थिक गतिविधियां ही ठप पड़ जाएं। जापान इस वर्ष गर्मियों में लोगों का ऊर्जा खर्च कम करने के लिए अरबों डॉलर आवंटित करने जा रहा है। ईरान संघर्ष के चलते ईंधन महंगा होने के कारण ये उपाय अपनाया जा रहा है। सरकार ने मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इस कदम को मंजूरी दी। इसके तहत जुलाई से सितंबर तक बिजली व गैस के बिल कम करने के लिए सरकार लगभग 510 अरब येन यानी 3.2 अरब डॉलर खर्च करेगी। ये धनराशि मौजूदा वित्त वर्ष के बजट में से अलग रखे गए 10 खरब येन के आपात कोष से आएगी। अधिकारियों का कहना है कि इस वित्तीय सहायता से 3 महीनों में एक औसत परिवार के गैस व बिजली के बिलों में लगभग 5,000 येन यानी करीब $31 की कमी आएगी। वित्त मंत्री खातायामा सात्सुकी का कहना है कि सरकार पश्चिम एशिया से होने वाली ऊर्जा आपूर्ति पर नजर रख रही है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। भारत और जापान के विदेश मंत्रियों ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित नौवहन तथा स्थिर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आपसी सहयोग पर सहमति व्यक्त की है। जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु मंगलवार को भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की क्वाड व्यवस्था के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत यात्रा पर हैं। क्वाड बैठक से पहले सोमवार को मोतेगी ने भारतीय विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर से मुलाकात की। जयशंकर ने भारत जापान संबंधों को और मजबूती देने की आशा व्यक्त की। मोतेगी ने घनिष्ठ द्विपक्षीय समन्वय की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि दोनों देशों को स्वतंत्र एवं मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र बनाने के प्रयासों में प्रेरक शक्ति के रूप में काम करना चाहिए। जयशंकर और मोतेगी अहम सामग्रियों की आपूर्ति श्रृंखला को और लचीला बनाने सहित आर्थिक सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग में तेजी लाने पर सहमत हुए। उन्होंने पुष्टि की कि भारत और जापान रक्षा, सुरक्षा और जन आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के ठोस कदम उठाएंगे। दोनों ने पश्चिम एशिया के हालातों पर भी विचार विमर्श किया और होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित नौवहन तथा ऊर्जा व अहम सामग्रियों की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने सहित विभिन्न मुद्दों पर सहयोग की पुष्टि की।

0: ये समाचार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: जापान के शिक्षा मंत्रालय की एक विशेषज्ञ समिति ने सरकारी स्कूलों से आग्रह किया है कि वे विदेशी छात्रों की तेजी से बढ़ती संख्या से निपटने के लिए बाहर से जापानी भाषा के प्रशिक्षकों को नियुक्त करें। इस समिति ने विदेशी छात्रों के लिए शैक्षिक वातावरण में सुधार के उद्देश्य से एक रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया है। मंत्रालय का कहना है कि पिछले शैक्षणिक वर्ष में मार्च तक सरकारी स्कूलों में रिकॉर्ड 84,759 छात्रों को जापानी भाषा की कक्षाओं की आवश्यकता पड़ी। 2016 के शैक्षणिक वर्ष के बाद 9 साल में ये संख्या दुगनी हो गई है। आमतौर पर लाइसेंस प्राप्त शिक्षक ही जापानी भाषा पढ़ाते हैं, लेकिन मसौदे में प्रस्ताव दिया गया है कि शिक्षा अधिकारी एक ऐसी व्यवस्था अपनाएं जिसके तहत कुछ शर्तें पूरी करने पर लाइसेंस के बिना भी बाहरी अध्यापक अंशकालिक प्रशिक्षक के रूप में कक्षाओं में पढ़ा सकें। मसौदे में सरकार से ये भी आग्रह किया गया है।

0: है कि वो वित्तीय सहायता प्रदान करे ताकि जापान भर की स्थानीय नगर पालिकाएं देश में नए आए बच्चों के लिए पूर्व कक्षाएं आयोजित कर सकें। इन कक्षाओं में बच्चे स्कूली तौर तरीके और जापानी भाषा के बुनियादी वाक्य सीख सकते हैं, लेकिन ऐसे कार्यक्रम चलाने वाली नगर पालिकाओं की संख्या अब भी सीमित है। समिति के सदस्यों ने विश्वविद्यालयों में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विदेशी बच्चों को पढ़ाने से संबंधित कक्षाएं शामिल करने और जापानी भाषा शिक्षण के लिए दिशा निर्देश बनाने की भी मांग की। जापान में डिपार्टमेंट स्टोर की बिक्री अप्रैल में लगातार चौथे महीने बढ़ी। वसंत के कपड़ों तथा आभूषण व घड़ियों जैसी महंगी वस्तुओं की मांग में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई। जापान डिपार्टमेंट स्टोर्स एसोसिएशन का कहना है कि मौजूदा स्टोरों में बिक्री 440 अरब येन से कुछ अधिक यानी 2.8 अरब डॉलर रही। पिछले साल इसी महीने की तुलना में ये 5% से अधिक की वृद्धि है। विदेशी पर्यटकों को टैक्स फ्री वस्तुओं की बिक्री में लगातार दूसरे महीने वृद्धि दर्ज की गई। इस श्रेणी में आमदनी 18% बढ़कर 52 अरब येन यानी 33 करोड़ डॉलर हो गई। एक तरफ चीन से आने वाले पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई, लेकिन वहीं ताइवान, दक्षिण कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया के यात्रियों द्वारा अधिक खर्च से इसकी भरपाई हो गई।
1: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
2: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।

0: NHK World Japan की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 13वें पाठ में सीखेंगे ये बताना कि आप क्या करना चाहते हैं।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम, रोबोट मकान मालकिन हारूजी और चीन से आई फोटोग्राफर मिया से बात कर रही है। सब साझा आवास हारू सान हाउस की बैठक में हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 13वें पाठ की बातचीत।
2: निहोन नी वा नारेमाश्ता का?
3: हाई।
2: निहोन दे दोन्ना कोतो गा शिताई देस का?
3: यूकी गा मितताई देस। 北海道に行きたいです。
2: 北海道、いいね。
3: あと、友達に会いたいです。
2: おや？大丈夫？顔が赤いよ。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले हारूजी ने ताम से पूछा,
2: 日本には慣れましたか？
1: जापान की आदत हो गई।
0: ताम ने जवाब दिया,
3: हाय
1: जी।
0: उसके बाद हारूजी ने कहा,
2: निहोन दे दोन्ना कोतो गा शिताई देस का?
1: जापान में क्या करना चाहती हैं?
0: ताम ने कहा,
3: युकी गा मितताई देस।
1: बर्फबारी देखना चाहती हूँ।
3: होक्काइडो नी इकिताई देस।
1: होक्काइडो जाना चाहती हूँ।
0: तब मिया ने कहा,
2: होक्काइडो, ई ने।
1: होक्काइडो अच्छा है।
0: ताम ने आगे कहा,
3: अतो तोमोदाच नी आईताई देस।
1: और एक दोस्त से मिलना चाहती हूँ।
0: हारूजी के सेंसर ने कुछ भांप लिया और उनके गालों पर गुलाबी रोशनी जलने लगी। उन्होंने कहा,
2: ओया,
1: अरे।
0: मिया ने भी देखा कि ताम कुछ अलग लग रही हैं। उसने कहा,
2: डाइजोबु,
1: ठीक तो हो?
2: काओ गा अकाइयो,
1: चेहरा लाल हो गया है।
0: लगता है ताम किसी खास दोस्त की बात कर रही हैं। खैर, कहानी में आगे पता चल ही जाएगा।
1: आज का मुख्य वाक्य है
3: युकी गा मितताई देस,
1: यानी बर्फबारी देखना चाहती हूँ। इसे याद करके आप ये बता सकेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं।
0: इसमें
4: युकी
0: का अर्थ है बर्फबारी और
4: मिताई देस
0: का मतलब है देखना चाहती हूँ।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि आप क्या करना चाहते हैं ये बताने के लिए क्रिया के मास रूप में से मास हटाकर ताई जोड़ते हैं। क्रिया मिरु यानी देखना का मास रूप है मिमास, तो उससे बन गया मिताई।
0: और अंत में जुड़ा है देस, जिससे वाक्य का विनम्र रूप बनता है। आज की बातचीत की दो अन्य पंक्तियों में भी वाक्य विनम्र रूप में है। एक है
4: होक्काइडो नी इकिताई देसु,
0: जिसका अर्थ है होक्काइडो जाना चाहती हूँ। और दूसरा है
4: तोमोदाच नी आईताई देसु,
0: यानी एक दोस्त से मिलना चाहती हूँ।
1: एक और जरूरी बात यह है कि वैसे तो जापानी भाषा में कर्म कारक है ओ, जो उस संज्ञा के बाद लगता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन कभी कभी ये गा में बदल सकता है, जैसे उन वाक्यों में जिनमें क्रिया के ताई रूप का इस्तेमाल हुआ है।
0: तो वाक्य बर्फबारी देखूंगा को जापानी भाषा में कहेंगे युकी ओ मिमास, और अगर क्रिया का ताई रूप लगाकर बोलना हो कि बर्फबारी देखना चाहता हूँ, तो वाक्य बनेगा युकी गा मिताई देस।
1: तो अब वाक्य सुनिए और साथ में बोलकर उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
4: मिताई देस, युकी गा मिताई देस।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक महिला एक आदमी से पूछ रही हैं कि वे जापान में क्या करना चाहते हैं।
3: निहोन दे नानी गा शिताई देसु का?
5: रामेन गा तबेताई देसु।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले महिला ने पूछा,
3: 日本で何がしたいですか？
1: ジャパンमें क्या करना चाहते हैं?
4: 日本で。
0: का अर्थ है जापान में। ये प्रश्न है, इसलिए इसमें प्रश्नवाचक शब्द
4: नानी
0: यानी क्या का उपयोग हुआ है। नानी की जगह आप हारूजी की तरह
4: दोन्ना कोतो
0: का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है किस तरह का काम और भाव है क्या।
4: शिताई
0: है क्रिया,
4: शिमास
0: यानी करना का ताई रूप।
1: इसके बाद आदमी ने उत्तर दिया,
5: रामेन गा थाबेताई देस,
0: रामेन खाना चाहता हूँ।
1: इसमें
4: थाबेताई
1: है क्रिया,
4: थाबेमास
1: यानी खाना का ताई रूप। तो अब इस उत्तर को बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
4: निहोन दे नानी गा शिताई देस का, रामेन गा थाबेताई देस।
0: अब ये बताने का अभ्यास करते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। मान लीजिए आप क्योतो के किंग काकुजी मंदिर जाना चाहते हैं, तो ये बात कैसे बताएंगे?
1: मंदिर के नाम का उच्चारण है
4: किंग काकुजी, किंग काकुजी,
1: और क्रिया जाना के लिए जापानी शब्द है
4: इकिमास, इकिमास।
1: तो किंग काकुजी जाऊंगा या जाऊंगी बोलने के लिए जापानी वाक्य होगा
4: किंकाकुजी नी इकिमास।
1: तो अब कोशिश कीजिए।
3: किंकाकुजी नी इकिताई देस, किंकाकुजी नी इकिताई देस।
0: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो मिया की पंक्ति है। ये उसने ताम को शर्माते हुए देखकर बोला था, आप भी याद कर लीजिए।
2: दाइजोब,
4: दाइजोब,

0: おや？
1: 大丈夫？顔が赤いよ。
0: はるさんの知恵袋。
2: और अब बारी है अंश हारू जी की सलाह की। आज की बातचीत हारूसान हाउस की बैठक में हो रही थी, इसलिए आज आपको जापानी घरों के बारे में बताते हैं।
3: दोस्तों, जापानी घरों की बनावट या कमरों की संख्या अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ दो तरह के कमरे होते हैं, जापानी शैली के कमरे और पश्चिमी शैली के कमरे।
2: पश्चिमी शैली के कमरों का फर्श या तो लकड़ी का होता है या उस पर कालीन बिछा रहता है। उस पर लोग अक्सर कुर्सी और मेज लगाते हैं।
3: दूसरी तरफ जापानी शैली के कमरों में फर्श पर तातामी यानी फूस से बनी गद्देदार चटाई लगी रहती है। लोग तातामी पर ही जाबुतोन गद्दियां लगाकर नीची मेजों के इर्द गिर्द बैठते हैं और फुतोन गद्दे बिछाकर सोते हैं।
2: लेकिन इन दिनों पश्चिमी शैली के कमरे आम होते जा रहे हैं। बहुत सारे घरों में दोनों ही शैलियों के कमरे भी होते हैं, जिनमें से कम एक कमरा जापानी शैली का होता है। तातामी पर बैठना, सोना बहुत अच्छा लगता है।
3: एक और जरूरी बात ये है कि घर चाहे जापानी शैली का हो या पश्चिमी शैली का, जूते मुख्य द्वार के पास उतारकर घर की चप्पल पहनना आम है।
2: और तातामी कमरों में जाते समय तो चप्पल भी उतार कर जाते हैं। इस तरह आप तातामी की खुशबू का आनंद लेते हुए कमरे में आराम कर सकते हैं।
3: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
2: अगले पाठ में ताम वियतनाम में बिताए कुछ पुराने दिन याद करेंगी। तब तक के लिए सायोनारा।